संत बाबा तस्वीर महापुरुष मस्तु आने वाले कोल गुरसिख बैठे ने एक कल्याण सिंह भी बैठे। महापुरखा ने आख्या अज भई चित कर दे धर्म दे किरत दी रोटी खाई। किरत दी रोटी कहन लगे महाराज जो हुक्म अज ही प्रबंध कर लेने हैं। मजदूरां वाले कपड़े पा ले, एक ठेकेदार दे कोल चले गए जेड़ा बिल्डिंग बना रहा सी। भाई कल्याण सिंह जी पंच सत गुरसिखां नूं नाल लेके जदों उहदे कोल पहुंचे हन, कहन लगा जी असी मजदूरी करना चाहते हैं करो। आठ घंटे काम करना पड़ेगा, ठीक है करांगे। मजदूरी तय हो गई, जितना काम आठ घंटियां विच करना सी चौं घंटियां विच कर दिता। एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम श्री वाहिगुरु। ठेकेदार ने बुला के आख्या ऐ फड़ो पैसे ते जाओ। कहन लगे नहीं वायदा अठ घंटे दा है। फिर दुगनी मजूरी देन लगा, कहन लगे नहीं जो बचन होया है ओ ही लवां। कहन लगा पहले मजदूर वेखे ने अजीब आदमी हैं, ऐसे बंदे ता मिले नहीं। खैर जदों उन्हां पैसियां दा समान लियांदा आटा घ्यो दाल ते फिर हत्थी बना के बाबा अतर सिंह जी नूं छकाया, छक के बाबा जी इतने प्रसन्नता विच आए कहन लगे अज ते लंगर छकण दा आनंद आ गया, कल आपां भी चलांगे भाई। बाबा अतर सिंह जी ने भी मजदूरां वाले भेस कर ले। अज उसे ठेकेदार कोल पहुंचे, अज भी भाई काम मिलेगा। ठेकेदार उन्हां वल बार बार तक रहे है कि ए मजदूर नहीं हन, ए कोई फरिश्ते नहीं, ए कोई होर लोक दे बंदे आए हैं। ते जदों वेखदियां वेखदियां बाबा अतर सिंह जी ते निगाह पई ते चरना ते डिग पिया, कहन लगा तू मजदूर नहीं है। ऐसा नाम रतन निर्मोलक उन पदार्थ पाया, अनक जतन कर हृदय राख्या रतन न छपे छपाया। गुरु की साथ संगत कहन लगा तुसी मजदूर नहीं ते कल दा ही मेरे दिमाग ते बड़ा बोझ पिया होया है ते अज तुसी आए हो मैनू माफी दे दे। मैं ए गुनाह नहीं कर सकदा कि तुसी मेरे सामने टोकरी चुको। कुछ सिख लंघ रहे सन, उन्होंने वेख्या होए बाबा अतर सिंह जी इत्थे खड़े ने ते झट चरना ते मथा टेकिया। गुरु की साध संगत कहन लगे बाबा जी आप दी किरत तां एहो ही है कि आप कीर्तन सुनाओ, सानू चंगे राह लाओ ते आप इस भेस विच खड़े हो। ते फिर कहंदे ने बाबा अतर सिंह जी ने सिंघां वल वेख्या,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 18 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ 18 ਹੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਭਾਗ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਅਨਰਥ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤੀ।

ते गुरु अमरदास जी अजे गुरु नहीं सन बने। बाबा अमरदास जी सन 72 साल दी उम्र तक अपने जीवन विच हर साल मंडली दे नाल हरिद्वार जाया करदे सन। ते हरिद्वार जा करके पाठ पूजा करनी, संतां दा संग करना, ते फिर बई गंगा दा इशनान करना। ते गंगा दे इशनान करन दा फल प्राप्त करना। एक दिन ऐसा आया, इशनान कीता, जिथे आसन लगाया सी उथे नाल ही पंडित जी दा आसन सी। पंडित जी बड़े विद्वान। पंडित जी ने देखिया बाबा अमरदास जी दे पैरां दे विच पदम है। ए पदम भगवान कृष्ण महाराज दे पैर दे विच सी। ते पंडित जी ने कहा, बाबा जी आप दे पैर दे विच ते पदम है। ते ए पदम आम मनुख दे पैर विच नहीं हुंदा। जिदे पैर विच होवे ओ या ते राजियां दा राजा बनदा है, सुल्तान बनदा है, या फिर संतां दा महान संत बनदा है, जेड़ा सारियां नूं परमात्मा नाल जोड़दा है। सुन के हैरान होए, लगन बड़ी सी परमात्मा दे चरना कमलां दा ध्यान तरन दे। समा होया खान दा, ते पंडित जी ने पूछ लिया, बाबा जी आप दे गुरु कौन हन? गुरु तारन नहीं सी कीता, ते जदों इनकार कीता कि मेरा अजे गुरु कोई नहीं, ते पंडित जी ने कहा, मैं अपना जन्म प्रिष्ट नहीं करना, मैं आप दे नाल प्रशादा नहीं छक सकता। आपने गुरु धारण नहीं कीता, कहंदे हन निगुरे दा नाओ बुरा। कलेजे दे विच तीर लगा, उदास चित अपने घर वल नूं पुजे। रात सारी नींद नहीं आई, ते अमृत वेला होया कि सुनदे हन के नाल दे करों भरा दे करों उना दी नूं राणी जपजी साहिब दा पाठ कर रही है। ज्यों ज्यों पाठ सुनदे

कहन लगे, गुरु महाराज मैं आज कुड़म बन के नहीं आया। मैं जानदा हां कि आप मेरे छोटे भरा दे सदके मेरा सत्कार करना चाहते हो, पर मैं ते आज दास बन के आया। आज ते मैं अपनी चोली खैर पवान आया हां, मेरे ते कृपा करो, मैनू अपना सेवक बना लवो। गुरु अंगद देव जी कहन लगे, आप ते मालक हो, कर दे मालक हो, आए हो ते गुरु नानक दे कर दी सेवा करनी शुरू कर दे। देख दे देख दे बाबा अमरदास जी सारा दिन संगत दी सेवा कर दे, लकड़ा टोंदे, लंगर दे विच प्रशादे पकांदे, संगता नू छकांदे, ते फिर गुरु महाराज दी भी सेवा कर दे। रात पै जांदी ते सारे सेवक सौ जांदे, ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ए गागर लैके ब्यास वल चल पैंदे।

राजा ही नहीं कोई रंक भी सेवा कर सकता है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने एक मटका लिया, एक मग लिया, ते आंदे जांदे राहियां नूं पानी पिलाना शुरू कर दिता। भाई जिथे पानी पिलाया गुरु नानक सच्चे पातशाह ने, अज उथे गुरु नानक प्याओ दा गुरुद्वारा बनिया होया है। संगतां जांदियां हन, प्यासियां जांदियां हन, तृप्त होके आउंदियां हन, मन दियां आशावां लेके जांदियां हन, मनोकामना पूरियां करवा के आउंदियां हन। बाबा नानक जी दी इस प्रेरणा नूं लै करके, इस सेवा नूं सामने रखदे होए भाई साहिब भाई गुरदास जी सारिआं नूं

गुरु के सिखो ओ मेरे दुष्ट दमन पिता साहिब कलगीधर पातशाह निरंकार दे चरणा नाल जुड़े हैं। आपां भी थोड़ा समा मेरे पातशाह दे चरणा नाल जुड़ के इस शब्द नूं श्रवण कीजिए। मैनूं याद है कैलगरी विखे ये शब्द दास पढ़ रहा सी। आ गोरे सिख जिन्हां ते पातशाह दी बहुत मेहर है, बहुत कृपा है। आ नवे सिख सज रहे भावे उन्हूं समझ नहीं सी आ रही, सुन रहा सी। बीबी सी उसने उठ के कहा भावे मैनूं अर्थ समझ विच नहीं आए पर मेरा मन कलगीधर पातशाह गुरु गोविंद सिंह साहब जी के चरणों नाल जुड़ गया। उन्हें आख्या मैं नितनेम नाल इसनू टेप ते सुनदी हाँ और बड़ा ही मैं जिवें शब्द सुन के हेमकुंड साहब ते पहुँच जानी हाँ। तो गुरु की साध संगत आओ आपां भी उसे ध्यान नाल जिस ध्यान नाल कलगीधर पातशाह जुड़े बैठे ने आपां

अमृत, अमृत की है, अमृत है परमेश्वर दा नाम, अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तैयार करके सिखा नु पियाया ते खालसा पंथ साजिया। पर इस अमृत दी कहानी बड़ी लम्मी, चार युग होए ने, सात युग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग। हर युग विच अमृत पीता गया, पर अमृत पीण दा टंग वखरा, अमृत लभण दा टंग वखरा। एक गल होर, कुछ लोकां अमृत पीता पहलियां युगां विच, अमर होने वास्ते कि सानू मौत ना आवे, कोई दुख लागे ना आवे, अपने वास्ते अमृत पीता अपने भले वास्ते। पर जेड़ा अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिखा नु पियाया, ओ अमृत आपा वारन वास्ते, जुलम खत्म करन वास्ते, मजलूमां दी रखिया करन वास्ते। तो आओ विचार करिए, पहला सतयुग बारे के सतयुग विच ए अमृत किस तरह मिलिया ते किस तरह पीता गया। पहला हिंदू मत अनुसार कथा, उस तो बाद गुरमत अनुसार।

एक किस्सा तरती तेन से पानी मन्या गया समुंदर बड़ा वटे एक वरी देवतिया ने विचार की थी देखिए ता सही एडा वड़ा समुंदर है इस विच की चीज है केड़ी केड़ी वस्तु है पर एडे वड़े समुंदर विचों चीजा लभनिया ते ए देखना कि समुंदर विच की है बड़ा औखा सी सलाह कीती सारे क्यों ना समुंदर नू रिड़किया जाए जिस तरह दही है दही दे विच लस्सी भी मक्खन भी पर लस्सी ते मक्खन आपां नू उदों मिलेगा जदों आपां दही नू रिड़कांगे ते दही नू रिड़कण वास्ते मदानी दी लोड़ है रस्से दी लोड़ है समुंदर नू रिड़कण वास्ते भी मदानी चाहिए रस्सा चाहिए पर समुंदर अथा है एडे वड़े समुंदर वास्ते लकड़ दी मदानी बनानी बड़ी औखी ता सारियां देवतियां सलाह करके मंदराचल पर्वत नू मदानी बनाया शेष नाग नू रस्सा बनाया शेष नाग नू उस पर्वत दे द्वाले लपेटिया गया एक पासियों उस सप नू देवतिया ने फड़िया एक पासियों दैंता ने देवतिया विच विष्णु भगवान इंदर आदिक देवते ने दूसरे पास से दैंत बड़ी शक्ति ते ताकत वाले एक वरी साप नू शेष नाग नू देवत्या ने अपने वाल खिचिया एक वरी दैंता ने साप नू शेष नाग नू अपने वाल खिचिया ते ओ जड़ा पर्वत सी ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਾਣੀ ਘੁੰਮਦੀ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਦੈਂਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ते सारियां तू पहला जहर निकलिया जहर बड़ा खतरनाक सी धरती ते सुट देने ता नुकसान बड़ा हुंदे ओ जहर शिवजी भगवान नू पीण वास्ते बेनती कीती गई ओ सारा जहर शिवजी भगवान ने पीता उस जहर दा असर शिवजी भगवान ते भी होया उन्हां दे गले दा रंग नीला पै गया इस करके शिवजी भगवान नू लोक नीलकंठ भगवान करके भी याद करदे जहर तों बाद अनेकां वस्तुआं निकलियां जिन्हां विच काम तीन गऊ पारजात दरखत लक्ष्मी अनेकां वस्तुआं निकलियां लक्ष्मी नू विष्णु भगवान जी ने अपना लिया पारजात दरखत नू इंद्र देवता अपने स्वर्गां विच लै गया जिते अनेकां चीजां निकलियां उथे अमृत दा कड़ा भी निकलिया पर ए अमृत दा कड़ा दैंतां दे हाथ लग गया

एक गुफा च बह जा। करोड़ा करोड़ा साल हवा खा के हवा पी के तेरा नाम जपा, सुपने विच भी मैं सोवा ना। इन्ना तेरा नाम जपा पर अकाल पुरख तेरे नाम दी कीमत

अकाल पुरख दे चरणा विच बेनती की। गुरु साहबां दी अखां बंद ने, अखां दे सामने एक सूरत आई, लत्तां पतलियां पर भार सहण वालियां, चौड़ी छाती, मत्था चमकदा, अखां विच नाम दी लाली, बोल फरकदे नहीं, सोहना दाड़ा, सिर ते दस्तार, हाथ कड़ा, गात्रे कृपान, तेड़ कछहरा। सोहनी सूरत देखी तो गुरु साहब जी पुछदे ने, ऐ सूरत तू कौन है? उस सूरत बोली, मैं खालसा। गुरु साहब जी पुछदे ने, तू कित्थों आई है? उस सूरत बोली, मैं तुहाडे हिरदे विचों आई हाँ, मैनू हुण तुसी बाहर प्रगट करो। जो चाहिदा सी ओ मिल गया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वापस आनंदपुर साहब आ गए, पर सोचन लगे, ये सूरत बड़ी सोहनी पर किन्नू दिया? मसंदां, पंडतां, साधुआं सन्यासियां नू किन्नू दिया ये सूरत? क्योंकि जे आपां दुध लैण जाना होवे ते भांडे नू चंगी तरह साफ करके ले जाने हैं, जे दुध वास्ते भांडा साफ चाहिए ते अमृत वास्ते भी तां मन दा भांडा सोहना।

आनंदपुर साहब, धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह दा दरबार सजे है। एक पासे माइया बैठिया ने, एक पासे पुरुष बैठे ने। सिंघासन ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज विराजमान ने। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होए है, कीर्तन हो रहे। अचानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने अखां बंद कीतियां सन, अखां खोलियां। एक पहरेदार सिख नूं कोल बुलाया ते कहन लगे, सिखा कुछ दूर दरखत है, उस दरखत दे थले एक सिख बैठा रो रहे है, जाओ उसनू प्यार नाल साडे को ले। पहरेदार चला गया। दूर दरखत थले सचमुच एक सिख बैठा रो रहे है, अखा बंद नहीं, हाथ जुड़े हुए ने, पर बंद अखा विचों अथरू पै गिरदे ने। ते नाले कह रहे है, ऐ सच्चे पातशाह, मैं की गुनाह कीता है, की पाप कीता है, काबुल तू आया, तेरे दरबार पहुंच गया, पर तेरे दर्शन करन दा मैनू हुक्म नहीं। पहरेदार सिख पहला ते सुनदा रहा, फिर मोढ़ा फड़ के हिलाया ते नाले कहा, सिखा तू कोई पाप नहीं कीता, तेनू ते आप कलगियां वाले ने याद कीता। उससे कुठिया अखां पूंजदा होया पहरेदार दे नाल तुर पिया। जदों दरबार विच दाखल होण लगा, इत्थे भी इक पहरेदार खलोता सी। उसने कहा, ए काबल वाला सिख दरबार विच नहीं जा सकता। नाल आया पहरेदार कहन लगा, ए दरबार क्यों नहीं जा सकता? तां खलोता पहरेदार कहन लगा, जेड़ा वड्डा मसंद है चेतो, ओदा हुक्म है इस काबल वाले सिख नूं दरबार विच नहीं जान देना। ते सुन के नाल आया पहरेदार कहन लगा, जेड़ा चेतो मसंद दा मालिक है कलगियां वाला, मैनू ओदा हुक्म होया। ये सुन के पहला पहरेदार परां हट गया। सिख दे हाथ जुड़े ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सामने पहुंचे, दर्शन कीते, अखां विचों अथरू वगन लग पए। तीन दिन हो गए सन रोंदे हां, अरदासां करदे हां, गुरु दे दर्शन कीते, अपना सिर चरना ते रख दिता ते कलगीधर पातशाह सिर ते प्यार नाल हाथ फेरदे ने ते नाले बड़े प्यार दे नाल कहन लगे, सिखा काबुल तू आए, तीन दिन हो गए ने तेनू रोंदे हां, सानू पता है, सिखा साडे नाल बड़ा प्यार करना है, पर साडे वास्ते बेटा की लेके आए। साध संगत, गुरु किसी चीज का भुखा नहीं, गुरु ने बेटा क्यों मंगी, ए ते गुरु का कौतुक है। कहन लगे, सिखा साडे वास्ते बेटा की लियांदी है? सिख हाथ जोड़ के कहन लगा, पातशाह मैं की देन जूगा, सब कुछ आपदा है, मैं सुनियारा वा, हाथियां दे दंद दा एक कंगन जिहदे विच हीरे

पंडितां दी प्रीख्या ले दो लंगर लाए, एक विच मास बनाया, एक लंगर सादा बनाया। ते सहबा ने कहा जेड़ा मास वाला लंगर छकेगा ओनू बहुत ही माया मिलेगी, जेड़ा सादा लंगर छकेगा ओनू घट माया मिलेगी। मास खाण दे नाल सोने दियां मोहरां ज्यादा मिलनियां ने, ये सोच के बहुते मास वाले पासे बैठ गए, सादे पासे घट बैठे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिन्होंने सादा लंगर खाधा उन्हां पंडितां नूं चोखी माया दित्ती, ते जिन्होंने मास वाला लंगर खाधा जिन्नी कही सी उन्नी उन्नी माया उन्हां नूं दित्ती। पर इन्हां वल्लों भी मन उदास हो गया कि जिहड़ा आदमी माया बदले अपने धर्म ते पक्का नहीं रह सकदा, ओ जुल्म दा

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद माणिया है। असी आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हाँ कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चे नाल गलबात पंजाबी विच करते हो तो आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है तो अज तो इस पासे खास ध्यान दो। बच्चियां पास पंजाबी विच गलबात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल तां इह समा उहनां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकणगे तां गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना तां इक पासे रिहा, उह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकणगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकणगे? हो सकदा है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे, असीं तां उस ताते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हाँ। जे कुछ उलटाई है तां ध्यान दिओ ते उह पूरी करो। आप जितनिया वध तो वध जवाना बच्चों नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी तां सिखी दा मुढ अथवा फस्ट स्टैप है, सिखी दा धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही तां कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असीं तां अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हाँ। जदों गुरु नानक देव जी का प्रकाश होया तां मुगल राज दा समां सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटार हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सभना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सज्जना मित्रां नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते पंजाबी पढ़न लई संगतां नूं सचेत करो। अगों दाते दा अपना काम है, आप ही सहाई होएगा। फिर लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

ताई किसे ने आके आख्या सोइना मोइना तुसी इत्थे क्यों खड़ोते हो। आख्या इत्थों धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने लंघना है, सवेरे दी शाम हो गई असी खड़ोते हाँ। तां गुरु के सिख ने आख्या आके धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दूसरे रस्ते तो आके नगर विचों तां होके भी चले गए। ताई कन्ना विच फिर आवाज गूंजी, जाओ तुहानू ठाकुर दर्शन नहीं देणगे। साध संगत बोलो श्री घर आए ना नींद पौंदी है ना चैन आउंदा है, की करिए। किसे गुरु के सिख ने स्रोत पाई, जे अपने गुनाह बख्शाउणे ने ना ता आनंदपुर धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे चरणा विच जा। दोनों तुर पए आनंदपुर साहिब वाल बेनती करदे होए ए

भगत रविदास जी अपने शब्द विच फरमान करते हैं कि निंदा करन वाला मनुख कितने भी चंगे कर्म कर लवे उदे कर्म कीते हुए सारे निष्फल चले जाते हैं। जिमें कि 68

बहुत प्रसाद करावे पाठ करावे, पर जे निंदा हो गई ओ भी किसी महापुरख दी, ते कोई भी कीता होया कर्म फलीभूत नहीं हुंदा। जेड़ा मनुख इस भयंकर रोग विच फसे

ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਤਰਕਾਰ ਪਾਈ ਉਸ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਹੂਣਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਢੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਬਲਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢੋ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਚੱਕਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਤੇਲਤ ਕੇ ਕੱਪ ਜਿਉ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਨ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਮੈ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਾਨਵਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੰਭ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੰਭ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਕੜਾ ਦੁੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਐਸੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਭੰਵਰੇ ਜਿੱਡੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਪਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਦਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਮੱਖੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਦਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਪਲਦਾ ਫਿਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਨਾ ਕਿ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ, ਸੌ ਜਾਣਾ, ਖਾ ਕੇ ਪੈ ਰਹਿਣਾ, ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਸ ਔਲਾਦ ਦੀ ਬੜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਬਹੁਤ ਉਚੇਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਉਹਨੇ ਆਲਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਖੁੱਡ ਘੁਰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜੂਨ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੁਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਨ ਸਭ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਕੰਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਚਮਗਿੱਦੜ ਦੇ ਕੰਨ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨੱਕ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚੀਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਇੰਦਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਰਚਿਆ, ਲੱਖ 84 ਜੋਨ ਸਬਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵੜਿਆ,
मालिक निरंकार ने सब कुछ रचिया है ते सारे रचना दा शिखर जो है वो मनुख है। वाहेगुरु की सारी रचना दा क्लाइमैक्स मनुख है। सब तो वधिया रचना उहदी मनुख है। हुण मनुख भी बड़ा कुछ रच रहे हैं। सधारण डंडे तो शुरू होके यंत्रां तो शुरू होके अज इहदे कंप्यूटर इस नूं आप नूं हैरान करी जा रहे हैं। बंदे ने बड़ा कुछ रचिया है लेकिन बंदा संतुष्ट कोई नहीं क्योंकि इहने जो कुछ रचना है जो इहदी रचना दा शिखर है वो ये है कि ए जिसने इहनूं रचिया उहनूं लभ लै उहनूं जाण लै जे उहनूं नहीं जाण सकदा ते अपने आप नूं जाण लवे कि मैं की हां ते काहदे लई। ये सवाल बड़े चिर दा चलिया है। जद जद किसे नूं ये जवाब आउड़िया है कि मेरी होंद काहदे लई है एक नवे धर्म ने जन्म लिया। जद भी किसे नूं ये सवाल दा जवाब मिलिया है कि मनुखा जीवन काहदे लई है एक नवे धर्म दा जन्म होया उस धर्म के अनुसार ही लोग होए ने क्योंकि वो धर्म के अनुसार ही होके लोगों अपना जीवन सकार था हुंदा जावे। समा पा के लोगों ने धर्मां नूं केवल कर्मकांड बना दिता। धर्म पेहे हुंदे चले गए मुड़ के नवा धर्म लोड़ महसूस की जाती रही। धर्मां दा जन्म हुंदा रहा मनुख दे अंदर सवाल उठता रहा ते जवाब मुड़ मुड़ के यही सी। धन गुरु नानक दे सदीवी धर्म दे विच भी यही जवाब है। प्राणी तू आया लाह लैण तेरी जिंदगी दा तू मकसद है। लख चौरासी जोन सवाई मानस को प्रभदी वड्याई इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएगा। जे इस जीवन विच कोई उचेची गल ना कीती सिरजनहार नू ना पछाणिया ओदी सिरजना दी सिखर अपने आप नू ना पछाणिया ते फिर ओ भ्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो गत बिन रहण वेहई है। जिंदगी ता लंघ जाएगी लेकिन ये चक्कर बनिया रह जाएगा आउण जाण दा। कबीर जी दी जीवनी विचों एक साखी मिलदी है बड़ी प्रसिद्ध साखी। कबीर जी ने बाहर फिरदिया एक बैल वेखिया सी। बैल ओ जिसनू बहुत वरतिया गया वरत वरत के मार मार के उहदे कोल पूरा काम लैके जिसले ओ बोझ बन गया ते उहनू घरों कढ दित्ता गया। किसे तेली ने काम लिया है या किसे जिमीदार ने काम लिया है काम लैके जिसले बुढ़ा हो गया वो शरीर काम दा नहीं रह गया उसनू घरों कढ दित्ता। दिव दृष्टि वाले ब्रह्म ज्ञानी कबीर जी ने गौ नाल उसनू वेखिया उस रुलदे होए नू वेखिया तरस नाल भरे मन नाल गौ नाल वेखिया ते पछाणे पछाण के कहंदे ने तू ओही ता नहीं जिन्नू कहंदे हुंदे सां भगता आ जाया कर किते सत्संग विच ते तू किहा सी भगत जी आ जांगा जरा काका छोटा है अजे जरा सियाणा हो लवे ना किते इधर उधर छाल मार के डिग के लत बां ना पड़ा पवे जरा इहदा ख्याल रखना जरूरी। इस तो भी पिछे अपनी जवानी वेले तू ए करदा रहा कोई नहीं मैं व्याह करा लवा मैं आया करांगा बाल बच्चेदार हो गया बच्चों का ख्याल पै गया जरा तू वड्डा हो गया बच्चा ते तू यही कहता रहा जी हुण जरा उहदी निगरानी का बहुत ख्याल रखना पैंदा है किते विगड़ ना जावे। जिसने जवान हो गया तुसा किया भगत जी हुण ता जरूर आया करांगे जरा काके का व्याह कर दी काका भी व्याहया गया ते फिर एक रीझा के बस कोई नहीं वह हुण नवा नवा व्याह है वह अपने मौज मेले में आए थोड़े दिनों नूं अपना कम कार संभाल लवेगा ते फिर मैं आना ही करना होर करना की तुहाडे कोल ही आना होर कित्थे जाणे। वह भी समा भलिया लोका लंघ गया फिर एक ऐसा समा भी आया मुड़ के तेनू क्या भगता हुण तां आ जाया कर हुण तां मुंडा बाल बच्चेदार हो गया कहिंदा जी की करा मुंडा तां बाल बच्चेदार हो गया उहदे बाल बच्चे हुण मैनूं नहीं छड्डदे हुण उहदे बाल बच्चे नहीं छड्डदे पहला अपने बाल बच्चे फिर मुंडे दे बाल बच्चे कारोबार ए सारे झंझट जीवन लंघदा लंघ गया अखीर एक दिन ए शरीर तो छुट्टी कर गया लेकिन उस घर नूं ना छड़ सकिया उहदे च बिरती पैंदी रही। इस दे नाल मिलदियां जुलदियां कितनियां ही साखियां कहिंदे ने इस घर नूं कदे कुत्ता बन के चंबड़िया कदे उस नाली विच कीड़ा बन के फिरदा रहा कदे उस घर दी रखवाली विच नाग बन के फिरदा रहा कदे उस घर का बोझ ढोण वास्ते खोता बन के फिरदा रहा उस घर नूं नहीं छड़ सकिया उस घर का मोह नहीं छड़ सकिया मर गया जूना च पैंदा रहा जूना च भटकदा रहा। कबीर जी पछाण दे कहिंदे ने तू ओही ता नहीं तू ओही जापना है जिसनू कहिंदे सा भगती कर लै भगती कर लैंदा ते मुड़ के तैनू आ बैल दी जूनी ना पैना पै भगत जी उहदा नक्शा भी खिंचदे ओदे जीवन का जो नजारा बने है वह भी दिखा रहे ने सन कहंदे ने चार पांव जदों तेरे दो पैर सन तू खड़ा सा इन्हां दो पैरां ते
पैर दो सर खड़ा सर सीधा ते सीधा खड़ा होके तू बड़ा कुछ सोच सकता सर। इन्हां चारा पैरां ते खड़ा होके तू हुण कुछ नहीं सोच सकता। तेरी सोचन करन दी समर्था सीमित हो गई। उदो तू सोच सकता सर मगर तू ना सोचिया। पशुआ वाला जीवन ही बिताया। पेट भरियो पशुआ जो सोयो मनुख जन्म है हारे। हुण तेरे चार पैर ने हुण तू की सोचेगा। बल्कि जीवन दे विच भी कई बार ऐसा होंदा है कि मनुख लैके ख्याल बैठा है कोई नहीं कर लेने इस मामले च ढिल वरता के बैठा। भगती दे मामले च कई बार बंदा प्रोग्राम भी बनाउंदा रह जांदा और आम तौर ते पर जवानी विच लड़कपन विच बचपन विच बाल बच्चेदारी दे समय विच अधखड़ उम्र विच मनुख ऐसा सोचता रहिंदा बस हुण शुरू कर देना हुण बस कर ही देना है शुरू। थोड़े दिनां नूं ना भगती दा काम शुरू कर देना हुण नितनेम शुरू कर देना है होर गुरुद्वारे जाना शुरू कर देना और सच करके जानना जिहड़ा बंदा प्रोग्राम बनाउंदा रहिंदा ना कदे कुछ नहीं कर सकदा। करदा केवल ओह है जिहड़ा शुरू कर देता। जिसने शुरू नहीं किया केवल व्यौता बनाउंदा रहिया उहदा कदे कुछ नहीं बनदा। व्यौत करे ते नाल ही शुरू कर दे। जिसने शुरू नहीं किया ओह कदे सिरे नहीं लगदा। तुसां वेखिया कोई भी पैंडा करना हो एक कदम तुसी चुकदे हो ते ओह पैंडा मुक जांदा। लेकिन जिस बंदे ने कदम नहीं ना चुकिया वह पहला कदम हालांकि जेड़ा मंजिल ते पहुंचने वाला कदम है वह बड़ा महत्वपूर्ण जापदा। मंजिल ते पहुंच गए यह कदम अखीरला कदम बड़ा महत्वपूर्ण जापदा। लेकिन नहीं जेड़ा पहला कदम है वह बड़ा महत्व। जे पहला कदम ना चुकिया जाता तो आखिरी कदम भी कदे नसीब ना होंगे। वह पहला कदम यह है कि मनुख नूं बचपन तो बचपन छोटे तो छोटी अवस्था दे बड़े सियाने सूझ वाले मां बाप वो ने जेड़े आप गुरु भगती च प्रभु भगती च लगे ने ते बच्चियां नू प्रेर के गुरुद्वारे ले आउंदे ने नितनेम कराउंदे ने गुटका फड़ा के पाठ कराउंदे ने छोटे तो छोटी उम्र विच उन्हां नू गुरु नाल जोड़न दा जतन करदे। लेकिन खिमा करना बच्चियां नू गुरु नाल जोड़न दा जतन केवल वह करेगा जिहदी अपनी जिंदगी विच अपने जीवन विच जिहदे एक रूटीन एक जुगत बनी हुई है कि वह पाठ करदा। जे बाप बच्चे नू कहिंदा पाठ करिया कर ते आप नहीं करदा बच्चा कदे नहीं करेगा। बाप कहिंदा चल गुरुद्वारे चलीए जे तां आप तुर रहा है ते बच्चा भी नाल तुर पेगा। ते जे बाप लेटिया लेटिया कहे काका जा गुरुद्वारे होगा ते बच्चा उत्थों तक तुर पेगा राह जगह पिछा हो जाएगा। जवाब ना भी देवे कहेगा बापू आप तां जांदा नहीं मैनू कहिंदा नहीं पहुंच सकेगा। आप बंदा करे आप शुभ रस्ते ते आप शुभ मार्ग ते कदम धरे ते बच्चियां नूं छोटी तो छोटी उम्र च इस पासे प्रेर के ला ते जिहड़ा बंदा व्यौंता करदा रह जावे कर लेने अगले साल करांगे उदो अगले साल करांगे इन्ने साल हो जाइए फिर करांगे कोई नहीं कर सकता। वो पुराने ऋषिया ने कुछ व्यौंता कीतिया सन उन्होंने चार आश्रम बना दिते चार हिस्से जीवन दे कर दिते। वो कहंदे ने ब्रह्मचर्य 25 साल ब्रह्मचारी रहो फिर गृहस्थ आश्रम 25 साल तो 50 साल तक तुसी ग्रिस्त विच खचित रहो बच्चे हो जाण उन्हां नूं सुना के पढ़ा के लिखा के सवार के कमां कारां ते ला दिओ। 50 साल दी उम्र च फिर तुसी सन्यास लै लो 25 साल सन्यास त्याग करके ध्यान लाउणा सिखो भगती करनी सिखो 75 साल दे हो जाओ 75 साल तो बाद फिर जो कुछ सिखिया बाणप्रस्थ आश्रम विच लोकां नूं सिखाउंदे फिर। गुरु नानक साहब ने देखिया ए तमा कमाल दी गल है कि बंदा ऐसा प्रोग्राम बना के बैठा है कि 75 साल ते 100 साल दा होवेगा। जे 10 साल दी उम्र च फतेह के जा गया फिर की होवेगा सारी व्यौंत धरी रह जाएगी। ए तां जिथों जाके उथों सवेर फौरन जल्दी तो जल्दी। कबीर जी कहंदे ने जद तेरियां दो लत्तां सन उदों तैनूं सोचण दी लोड़ सी कि छेती तो छेती भगती वल लग जावां हुण तूं की करेगा। चार पांव दोए सिंह उदों सिर ते सिंग नहीं सी उदों सिर दे उत्ते सुरती दा पहरा सी ते सिंग पशुपणे दी निशानी। हालांकि कई मूर्ख जानवरां दे सिंग नहीं भी हुंदे लेकिन आम तौर ते सिंग उहदे सिर ते दिखाए जांदे ने। आ तुसीं देखदे हो ना कौडे राक्षस दी आपां कई बनाई हुई चित्र वेखदे हां फोटो वेखदे हां मानस खाणा बंदा मनुखां दा मांस खाण वाला बंदा उहदे सिर ते सिंग विखा दित्ते। इस करके विखा दिते कि मनुख नहीं है मनुख तो थले दी चीज है पशु पुणे वाली गल है राक्षस प्रति वाली गल है। राक्षसां दे सिर ते सिंग विखाए जांदे ने मनुख दे सिर दे उत्ते सिंग नहीं विखाए जांदे। हां जदों मनुख बहुत उच्चा उठ जांदा है ना फिर उहदे चेहरे दे दुआले एक नूर दिखाया जांदा
फोटो बनाउन वाले एक प्रकाश विखाउंदे ने। ए देवता हो गया, मनुख तो उच्चा उठ गया। मनुख तो थले आवेगा ते सिर ते सिंग विखाउने पैणगे। मनुख तो उच्चा उठेगा ते चेहरे ते नूर विखाउना पैगा। ए बिल्कुल मनुख दी अपनी मर्जी है कि थले नूं आउंदा है कि उपर नूं जांदा है। देवी गुणा वल वधदा है कि पशु गुणे वल वधदा है। कबीर जी कहिंदे ने चार पाम दोए सिंग गोंग मुख हुण तूं बोल कुछ नहीं सकदा, गल नहीं कर सकदा, मेरी गल दा उत्तर नहीं दे सकदा। तब कैसे गुण गई है, हुण तू करेगा भगती, उदो नहीं कीती हुण कर सकेगा। तब कैसे गुण गई है, उठत बैठत ठेगा पर है। उठदियां बहिंदियां तेनू सोटा मार देन, जिदे खेत दे कोलों भी लंघना है वह डांग नाल तेनू भजा देंदे। काम ना करन ते तेनू सजा मिली, हुण तेनू खाण ते किसे पासे मुंह मारन ते भी पैर पैर ते सजा मिलती है। हर बिन बैल विराने हुई है, विराने दे बैल जिदा कोई साई खसम ना हो, विराने विच भटकन वाला बैल। फाटे नाकन तेरी नक दे विच जेड़ा वो नथ पा के तेनू तोड़दे रहे ने, उस नथ ने तेरा सारा नक पाड़ छड़िया। फटिया होया तेरा नक जिदे च हुण नथ भी शायद ना पै सके। टूटे कंधन मार मार के तेरे कंधे उन्हें तोड़ छड़े, तेरे कंधे उन्होंने कुट कुट के तोड़ छड़े ने, जख्मी हो चुके ने। फाटे नाकन टूटे कंधन कोदो को पुस खई है। हुण ता तू किसे खेत नूं मुंह मारन नहीं देना, उन्होंने किते कोई थों तूड़ी कोई सुका चारा कोई घा तिनका किधरे पिया होया है, ए पुस खा के गुजारा तेनू करना पै रहा। सारो दिन सडोलत बन मैया, सारा दिन तू बन विच भटकदा रहना है। अज होना पेट अगही है, अजे भी तेरा पेट भी भरिया, भुख तेरी कायम है क्योंकि तेनू कुछ अज दा खाण नू देंदा नहीं। जिन्ना चिर तेरे शरीर विच काम करन दा दम सी उन्ना चिर तेनू अपनी लोड़ नू कुछ ना कुछ उपाल दे रहे। हुण क्योंकि तेरे शरीर दे अंदर सत्ता नहीं, हुण तेनू कोई खाण नहीं देंदा। कुदरत दे इन्हां खुले खेतां विचों कुदरत दीआं खुलियां चरवाहां इन्हां चरागाहां विचों भी तिनका तेरे भागां विच नहीं है। तो कहिंदे ने सारो दिन सडोलत बन मैया, अजो ना पेट आ गई है। तो कहिंदे ने जन भगतन को कियो ना मा कहो ना मानो, भगतां ने तेनू किया भगती कर लै, उस जीवन विच तू भगतां दा किया नहीं मन्निया, कियो अपनो पई है, हुण तू अपना कीता पा। वाकई मनुख अपना कीता वो तो है ना, बैल दी जूनी च पा रहे, लेकिन आम तौर से मनुख ऐसे जीवन में अपना कीता पा रहे। जिन्ने संसार दे दुखी ते हाय हाय करदे परेशान लोग ने, पापी कर्म कमाम दे करते हाय हाय एथे जीवन विच भी ते अगे भी। नानक ज्यों मथन माधानिया त्यों मथे धर्म राय, अगे जाके भी लेखा देना औखा हो जाता। जीवन विच भी महाराज कहिंदे ने

0: नवी म्यूजिक मेमोरी इंडिया फगवाड़ा कंपनी वालों पहली शब्दों की कैसेट संगतां दे वास्ते भेट की है। सच्चा पातशाह कृपा करे कंपनी के मैंबरां नूं अपने चरणों का प्यार सेवा करन दा बल बख्शे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

कबहू ना डरो। ए मालिक सानू एहो जिहा वर दे शुभ कमां तों पिछे ना हटी, जुलम नूं देख के कदम पछां ना खिचिए, साडी जान ते बेशक चली जाए। बहुत कुरबानियां कीतियां सिंघां ने, मुगल फौजां ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंघां ने बार बार अपनियां जानां दे के इस हिंद नूं बचाया। जिथे सिंघां ने एडियां कुरबानियां कीतियां, उथे मामा ने ते छोटे छोटे बच्चियां ने भी अपना खून डोल के सिखी दियां नीहां नूं पक्कियां कीता। फरक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंघां नूं मारदा है तां प्रशादा छकदा है।

सिखी किन्नी प्यारी है सिख नू, ओ मेरी मां नहीं, हो सकता है ओदे पुत्र दी शक्ल मेरे नाल मिलदी होवे, पर ओ सिंह दी मां नहीं हो सकती, क्योंकि सिंघां दियां मामां इंज सिदकों डोल दियां नहीं होंदियां। मां नस के आई, पुत्र कह दे एक वारी मैं सिंह नहीं, क्यों जान गुआंदा है, ए तेनू छड देणगे। अज गुरु दा सिंह जोश विच पार आया, जाद कर ठंडे बुरज दी कहानी, सरहंद दा साका अजे बहुते दिन नहीं होए, किमें माता गुजरी ने अपने बच्चियां नू सेरे बन के मौत वल भेजिया सी, भुल गई है, जाद कर। सिंघां दियां मामां कदों सिदकों डोल दियां ने, ओ ते आख दियां ने जा पुत्रा, अज गोविंद सिंह नू तेरे सिर दी लोड़ है, मेरी कुख सफली होवेगी। पुत्र दियां एहो जियां गल्लां सुन के मां दा सिदक जाग उठिया, ऐ कलगियां वालिया, इस हिंदुस्तान दी धरती खातर तू अपना पिता वार दिता, बुढ़ी मां वार दिती, चारे लाल वार दिते, सारा सरवंश वार दिता, ते मैं अपना एक पुत्र लगोई जांदी हां। मां दा सिदक जाग उठिया, आप मुहारे ही मां दे मुख विचों कलगी तर दे जकारे निकल रहे।

कुमार जी श्री दर्शन कुमार जी वालों पेश कीती गई है। आप समूह संगत नूं खालसा जी दे 300 साल जन्म दिवस की लख लख वधाई होवे। सतसंगियो आस है कि इन्हां दी ये सेवा आप कबूलोगे कि अगों वास्ते अरदास करोगे, महाराज बख्शिश करो। ऐसे ही तरह आप संगतां दी ये सेवा करदे रहन। शब्द गुरबाणी दियां कैसतां, इतिहास दियां कैसतां घर घर विच पहुँचांदे रहन।

परमात्मा अपने सेवक का मददगार बनता है। करतार ने सदा तो ही अपने दास दियां सारियां मनोकामना पूरियां कीतियां हैं। गुरु पूरा नमस्कारे, प्रभु सबे काज सवारे। सेवक नूं परमेश्वर ने किसे किस्म की थुड़ नहीं रहन दित्ती। साईं फरमाउंदे ने, हर अपनी कृपा तारी, प्रभु पूरन पैज सवारी।

जानो कि परमात्मा ने उस दे सारे काम सवार दिते। प्रभु ने उस मनुख उते मेहर दी निगाह कीती ते लोक परलोक विच उस दी लाज चंगी तरह रख ली। शब्द विच साहिबां दा फरमान।

तू मेरा वड्डा मालिक है, तू पारो स्वामी मोरा, ए पुन पदार्थ तोरा। तू मेरा वड्डा मालिक है, तेरा नाम पदार्थ जो मैनू गुरु दी राही मिलिया है, ये तेरी ही बख्शिश है। जन नानक एक ते आया, सर्ब फला पुन पाया। जिस मनुख ने गुरु दी शरण पै के परमात्मा दा सिमरना शुरू कर दिता, उसने सारे फल देन वाली रब

लक्षण बदल गए, सुलक्षणे हो गए, शुभ लक्षण हो गए। लक्षण कहिंदे ने जो कुछ नजर आउंदा। मनुख दी अंदर दी रहनी जिस वेले बाहर आ जांदी है लक्षण कहाउंदी। सतगुरु क्योंकि मनुख दी रहनी सुधार देंदे ने, इस करके जबान मिठी हो गई लक्षण चंगा है, चाल ठीक हो गई करते पुरख ताल दिवाया, जिंदगी ताल विच आ गई, बेताली जिंदगी ताल विच आ गई। चाल ठीक हो गई और एक कहने लक्षण जेड़े ने रफ्तार दस्तार गुफ्तार यही तो गल्लां होंदियां ने जिन्हां तो बंदा पछाणिया जांदा। पग किहो जी बनदा है भाव इस नूं अपने सजन सजाउण दा ख्याल भी है कि नहीं। और यही वजह है कि लोग तां कहिंदे ने पग बननी है लेकिन गुरु का सिख कहिंदा दस्तार सजाउणी है, क्योंकि इहनूं बड़ा ख्याल है कि मेरे सजन दा सवाल है, मैं सजिया सजाया गया ते सज के रहना मेरा काम। दस्तार तो पता लगता है इस बंदे दी रहनी बहनी की है, भाव वस्त्र पाउण तो रहनी बहनी तो मनुख दे अंदर दी सफाई दा ते अपने आप नूं बना के रखण दी रुचि दा पता लगदा। चाल तो पता लगदा है इहनूं तुरना आउंदा है, चाल तो ही चाल चलण दा भी पता लगदा, ते गुफ्तार तो जबान तो बोलण तो भी पता लगदा है इस दे अंदर की है। जो जीए होए सो उगवे, जबान तो ही निकलेगा जो अंदर है, अंदर बाणी है ते मुंह बाणी निकलेगी, अंदर प्यार है ते मुंह प्यार निकलेगा, अंदर नफरत है ते मुंह गाला निकलेंगी। सतगुरु की कृपा दे नाल मनुख दे लक्षण बदलते, पर उदों बदलते जदों गुरु के मार्ग पै जाते।

सच्ची वड्याई आद और अंत तो ए गुरु दी वड्याई चली आ रही जिसनू के पट्टा ने भी बाणी दे विच फरमान कीता है के बसंत दी रितु दे विच जो खिड़े हुए फुल हन सारे संसार दे विच और समुंदर दे विच चल रहियां जो लहरां हन इन्हां नू कोई गिण नहीं सकता। फिर भी जे कोई शिवजी दी तरह ध्यान करके बैठ जावे ते गुरु पासों बख्शां प्राप्त कर लवे ते एना पैंदियां होईयां बारशां दियां बूंदां दी गिनती कर भी लवे संसार दे विच जितने भी फुल हन उन्हां दी भी गिनती कर लवे ते समुंदर दे विच चल रहियां लहरां दी भी गिनती कर लवे मगर जो गुरु दे गुण हन उन्हां गुणां दी गिनती करनी असंभव है। पट भी फरमान करते हैं।

सतगुरु दा कर्म की है। सतगुरु अपने सिख नू परमेश्वर दे नाम दे नाल जोड़दा है। परमेश्वर दा नाम हिरदे दे विच दृढ़ करवांदा है और गुरसिख नू सच्चे सुख दी प्राप्ति करवा दिंदा है। ए सुख जो नाम दे राही प्राप्त हुंदा है गुरसिख नू साध संगत दे विच्चों प्राप्त हुंदा है और इस दी प्राप्ति तो बाद जितने भी दुख हन कलेश हन इना सारयां दी निवृत्ति हो जांदी है। सारे ही संसे दूर हो जांदे हन ते सुखां दी प्राप्ति हो जांदी है। साहिबां दा फरमान है।

0: तेरा था भी सोना, तेरा रूप भी सोना, तेरे भगत भी सोने। सुंदर स्वामी धाम मालक दा दर सोना है, एक गल दा ख्याल रखना, मालक दा दर केड़ा है, सो दर के हा, सो कर के हा, जित दर वसे कवन दर कही है, दरा भीतर दर कवन लहे, ओ केड़ा दर है, जिथे भी साध जन बैठ के उनू चेते करदे ने उथे।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani 24 hours a day from around the world.

मान सकता है जेड़ा अपने घर आ गया, जिदा मन भटक रहा है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी अग विच जल रहा है। ए पटकिया होया मन किते टिकदा नहीं, जिवें अक दे अंब नालों तूंबा बिछड़िया, फिर पटकन तो बिना होर कुछ नहीं। जिधर दी हवा है हवा दे बुलियां विच तके खांदा फिरदा। ऐसे तरह जिन्हां ने गुरु दे चरण छड़ के अपने निज घर नूं छड़ के जो कूड़िया पदार्थां दे नाल नेउ लाई बैठे हन, हजूर कहिंदे न जो घर छड़ गवावना सो लगा मन माहे। जेड़ा घर छड़ जाने उदे लई तू रात दिन भटक रहा है, ते जिथे जाए तुद वर्तना तिस की चिंता ना है, जिथे तू सदीवी काल वसना है। जेड़ा कार्य करन लई तू संसार ते आया है, उस घर दी कोई तैनू चिंता ही नहीं। ए शरीर भी एक घर है जिदे अंदर अकाल पुरख वाहिगुरु दी जोत है। मनुख शरीर लई सब कुछ करदा है, चंगे वस्त्र पहनदा है, खांदा पींदा पहनदा, सुगंधियां लाउंदा, सेजावां मानदा, पर इसने आत्मा नूं जिस आत्मा दे सदके शरीर चल रहा है उसनूं भुखिया ही मार छड्या, उसनूं कदे नाम दा भोजन नहीं दिता, कदे गुरु दी कृपा दे बस्तर नहीं पहनाए, कदी सत संगत दी सुगंधी नहीं लाई। हजूर कहिंदे ने जे तू सिमरन नहीं कर रहा, अमृत वेले जाग के इशनान करके अकाल पुरख वाहिगुरु दी भगती नहीं करदा, तां तू अपनी आत्मा दा आप घात कर रहे। दुर्लभ देह पाई वडभागी, नाम ना जपे ता आत्म घाती, मर ना जाई जै बिसरत नाम, नाम भी हुन जीवन कौन काम। हजूर कहिंदे नाम तो बिना तेरा जीवन केड़े काम है, ओ पशु मर जावे ता भी कम कर जांदा है, दस काज सवार जांदा है। तू संसार ते आके जे सिमरन नहीं कीता, पदार्थ छक ले चंगे वस्त्र पहन ले, सिमरन नहीं कीता ता फिर नरू मरे नर काम ना आवे, फिर तेरी देही किसे काम नहीं आउनी, ए राख दी टेरी हो जाएगी। इसलिए गुरु रामदास पातशाह जी कह रहे हैं, ओ मेरे मन परदेसी वे आओ करे तू क्यों भटकदा है, ए जो कुछ तेरिया अखां वेख रही हैं, ए जो सपना अर वेखना, ऐसे जग को जान इनमें कछ साचो नहीं, नानक के हो। इसलिए भाई अपने निज घर विच आ, विचार कर जिस कार्य लई तू आया, तैसी वस्त विसाहिए जैसी निभ है नाल, वस्तु ओ कठी कर जो तेरे नाल चलन वाली है। ए ता जो कुछ तेरिया अखां वेख रही हन, जदों भी प्राण पंखेरू उड़न गए, ए शिन विच सब कुछ पराया हो जाएगा। इसलिए मेरे मन परदेसी वे तू परदेश विच आए, ए जगत एक सराय है जो मनुख आया है, सराय दे विच बैठ ते सराय नू मुसाफिर खाने नू जेड़ा मनुख अपना घर समझ के बह जांदा है उनू कोई सियाणा नहीं कहेगा, उनू कह देंदे हन भाई ये कोई मूर्ख है, क्योंकि मुसाफिर खाना है। राती आउंदा है मुसाफिर पर भाती तुर जांदा है, ते जे उसनू जफा पा के बह जावे भई ये मेरा है ता फिर सियाणप नहीं। इसलिए तू परदेसी है। धन गुरु रामदास पातशाह शब्द विच कहिंदे हन, मेरे मन परदेसी वे आओ करे अपने निज घर विच आ, भई अमृत वेले उठ के इशनान करिए, ते फिर सत संगत विच बह के जपिए श्री वाहिगुरु। आओ करो गुरु रामदास पातशाह जी दे सोने दर्शन, क्योंकि बाणी दा दर्शन हजूर बख्शिश करदे हन, कोई प्यार दे नाल बाणी पढ़े प्यार दे नाल सुने, ये गुरु का दर्शन है।

दस बाल तन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी माझ दी वार विच आप बख्शिश करते हैं कि दस साल बचपन दे बीत जाते हैं, बीस रमण जवान हो गया, हुण घर दे सामान कट्ठे करन विच लग गया। तीसा का सुंदर कहावे, चाली सी पर होए पचासी, चाली ते पंजा साल दी उम्र तक इसने रात दिन एक करके अपने कार विहार तंदे कीते, पर परमेश्वर दे नाम दा कोई ख्याल नहीं कीता, नहीं उदा शुकराना कीता जिस वाहेगुरु ने अमोलक श्वास बख्शे सन। हुण पंजा साल तो उत्ते जदों उम्र हो गई, बुढ़ेपा आ गया, सत्रां दा मत

ऐसे भी मनुख आए पर चले गए। जुगां जुगांतरां तो मैं वेखदा आ रहा हां जेड़े एदे मालक बनदे माण अहंकार विच मत्ते होए अपने आप नूं खुद मुख्तियार दसदे सन। मैं तेरे कोलों पुछदा ओ किथे चले गए। अखीरलियां पंक्तियां विच एक ख्याल पेश कीता है।

पता नहीं किन्ना कु सियाण है, किन्ना कु सुगड़ है। कोई हिसाब ला सकता है, क्योंकि उसकी किरत का हिसाब नहीं लाया जाता। तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन समार। तेरी दिती हुई दात की समझ नहीं आती, तेरी समझ कितों आ। तेरी दात का ही मुल नहीं पाया जाता, तेरा कौन मुल पाए। तेरी दात ही एडी सोहनी, एडी खूबसूरत, एडी जुगत वाली है, तू किन्ना सियाना होगा। साहब कहते ने मत समझी, वो सियाना कोई होर भी है जिसने तेन शरीर दिता है, जिसने शरीर च मन पाया, जिसने तेन वर्तन वास्ते धन दिता है, जिस दिया सारिया बख्शिशा भोगदा है, ओदे नालों सियाणा होर तेन कोई मिलेगा नहीं। ते कई बार तो इन्ना भी भुलेखा लग जाता है, तू ऐसा समझ लग पैना उन्हें कोई गलती की है, मैं ठीक कर दे। जो उन्हें बनाया शायद गलत बनाया, मैं उन्हें ठीक कर देवा। जो उन्हें रचिया शायद गलत रचिया है, मैं सुधार कर देवा। अपने आप में सियाणा समझ बैठा होवांगा। कोई सूरत नहीं, कोई तरीका नहीं कि तू अपने आप में सियाणा समझ सके। जिसने तन मन धन जिन प्रभ दिया, जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पहनन खान। एक शब्द च महाराज सच्चे पातशाह ने सानू चेता कराया, चेता ही कराने वाली गल है। पता सारा है, भुल जाने साहिबा ने पावन बाणी च सानू उन्हां चीजां दी सारी निश्चता नहीं आउंदी, लेकिन मोटियां मोटियां जिन्हां बिना बंदे का नहीं सरदा उन्हां दा जिक्र महाराज ने किया। तो कहने तेनू ओदा चेता है, तेनू ओदा ख्याल है, जिसने तेनू इन्ना कुछ दिता है।

पूछा बादशाह, बड़ा आदमी कौन है? उसकी बहुत सी कारें हैं, उसकी बहुत फैक्ट्री है, उसके बहुत से बंगले हैं। नहीं, जो संगत के अंदर आकर अपने अहंकार को छोड़ता है, वो ही सबसे बड़ा इंसान है।

सिप साला करन वाला, कीर्ति करन वाला, उसनु गुरु महाराज ने ढाडी दा नाम दिता है। इतिहास विच पुराने ग्रंथां विच जिक्र आउंदा है कि भगवान दी उस्तत करन वाला जो हर वेले अपने हत्थां दे विच वीणा लैके रखदा सी, जिसका नाम नारद करके आया है, हर वेले प्रभु दी उस्तत करदा सी, कीर्तन करदा सी परमात्मा। एक वेर नारद भगवान ने प्रभु कोल एक सवाल कीता, है भगवान जे तेरे दर्शन करने हो ता दस किथे तेरे दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि तेरे दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। प्रभु दा मिलाप पावे कोई आखे के हत्था दियां हथेलियां दे विचकार दर्शन करा दें, कोई आखे त्रिकुटी चढ़ा के तेन दर्शन करा दें, कितने ही कर्मकांड करके कोई आखे के दर्शन हो जान, ये नामुमकिन है, ये पखंड है, कर्मकांड है, इंज दर्शन नहीं होंगे उसके। ओदे दर्शन भगवान नारद कहते हैं कि ऐ परमात्मा तेरे दर्शन करने होण तां कित्थे दर्शन करा, तां कहते हैं कि भगवान ने उस वेले कहा, ऐ भगत जे मेरे दर्शन करने होण ना मैं किसे दक्षण विच वसदा हाँ, ना किधरे पश्चिम विच वसदा हाँ, अते ना ही किसे खास स्थान ते मेरा वासा है, ना मैं मंदिर विच हाँ, ना किसे मस्जिद विच, ना किसे गुरुद्वारे विच, ना किसे गिरजे विच, जेड़ा मैनू इन्हां थावां ते लोड़दा है वो भरम विच है, जे मैनू लभना होवे तां मैं जिथे संगत प्रभु दे भगत जन बैठ के कीर्तन करदे होवन, उना दिया जिथे जुतियां पईयां होवन, उना दी जुतियां दी थां दे उत्ते उना दी चरण धूल दे विच मेरा स्थान। भगवान अपने भगतां दे वस है, उना दी संगत भगत जेड़े हन पावे जिथे मर्जी उसनू प्रगट कर लैन, भगत ने चाहिया तां पत्थर दे विचों भी प्रगट कर लैन, जे भगत ने चाहिया तां उस परमात्मा कोलों अपनी खेती दे विच हल भी जुताया, अपने डंगर भी उस कोलों चुगवाए, ए भगतां दी खेड है जिन्हां नूं प्रतख दर्शन हुंदे हन उस वाहगुरु दे। परमात्मा ने कहा है, ए नारद मेरा घर मेरा स्थान साध संगत दे विचकार है, उस तो सिवा मेरा कोई स्थान नहीं। जिहड़े उस्तत करदे हन, सिफत सलाह करदे हन, इक मन होके जपदे हन, कीर्ति दे विच जुड़े होए हन, निष्कपट होके, निर्छल होके, निस्वार्थ होके जिहड़े कीर्ति करदे हन प्रभु दी, उन्हां नूं मैं प्रतक अंतस्करण रूप विच अंतर आत्मिक दर्शन दिंदा हां, उत्थे मेरे दर्शन हुंदे हन। और भगत नारद इतना प्रभु का निकटवर्ती सी, प्रभु की प्रसन्नता सी उस भगत नारद उत्ते, क्योंकि वह कीर्ति करन वाला सी। तो गुरु महाराज ने गुरबाणी दे विच कीर्ति करन वाले नूं, कीर्तन करन वाले नूं, सिफत सलाह करन वाले नूं ढाडी का नाम दिता है।

की प्रयोजन लेके आया है। अगू गुरु पातशाह जी ने एक सवाल किया, एक मंग की थी।

ऐसा सवाल लेके इक वेद गुरु नानक भी अपने कर्ता पुरख वाहिगुरु दे उस पवित्र स्थान ते पहुंचे सन। लोकां ते भावे उस वेले समझिया सी कि गुरु नानक वेई नदी दे विच इशनान करन दे बहाने डुब के मर गया, क्योंकि मोदी खाने का हिसाब तेरा तेरा करके लुटा दिता। ते जदों हिसाब मंगिया गया होवेगा उस वेले बहुत सारा घाटा जिस वेले नजर पिया होवेगा, तां गुरु नानक वेई नदी विच डुब के मर गया। ए सी ना समझ लोकां दे ख्याल जिन्हां ने कदे गुरु नानक नूं पछाणिया तक नहीं, लेकिन जिन्हां ने पछाणिया जिन्हां ने गुरु नानक नूं जाता। बेबे नानकी कहिंदी है मेरा गुरु नानक जिहड़ा डुब्बिआं नूं तारनहार है वह आप किवें डुब सकदा है, उहदा इह कोई कौतक है। और सचमुच जदों तीसरे दिन फिर गुरु नानक प्रगट होए और उस वेले संसार दे सामने एक ऐसा पैगाम लेके आए

ऐसी वस्तु दे जिसनू मैं संसार दे कुल्ले पटके लोकां नू जाके वरता सकां। अरदास करते हैं

बख्शिश उत्थे मेरी मेर, जिसते तेरी कृपा उसते मेरी नजर। मेरा नाम पार ब्रह्म परमेश्वर, तेरा नाम गुरु परमेश्वर। जा संसार की मेरा नाम जपा, सड़दे बलदे लोकां ताकि शांति आवे। गुरबाणी विच महाराज ने फरमान किया है कि ऐसा अमूल खजाना बख्शिश किया उस वेले जदों के गुरु नानक पहुंचे सन अपने उस

शब्द गुरपीरा शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा बिन शब्दे जग भौराना।

एक है हरी हरी, ये ऐसा एक शुभ ते सच्चा विचार है जिसनू एक सच्चा ते सुच्चा भगत ही अपने जीवन दे विच कह सकता है, क्योंकि जिसका विचार एक परमात्मा दे नाल मिल गया, जिसका हर रोम रोम प्रभु चरणा दे विच रम गया और जिसका हर श्वास परमेश्वर दे नाल मिल गया, ऐसा भगत ही ये कह सकता है कि हमारे एक है हरी हरी। आन अवर सिंजान ना करी, ओ परमात्मा अपने भगत नू गुरु राही नाम देवांदा है, जैसा कि मालिक ने शब्द दे विच फरमान कीता है।

ताप जो तप है, व्रत है, नेम है, आचार तो मतलब करैक्टर है मनुख दा, और व्यवहार जो रोज दा व्यवहार करदा है, जात जो कम तो पहचानिया जांदा है। साहिब फरमान करदे हन कि ए सारा कुछ जे मनुख करदा होया अपने गुरु दे अर्पण कर देवे ते मानो के जो त्याग दे विच उसनु सुख प्राप्त होवेगा, जो शांति प्राप्त होवेगी, ओहो ही सच्चा सुख है और ओहो ही सच्ची उसनु शांति प्राप्त होवे। साहिबां दा फरमान है कि जे कोई ये चाहे कि मैं महा आनंद दी प्राप्ति कर लवा, ते महा आनंद दी प्राप्ति है कि उस मालिक दी कीर्ति कीती जावे, उस मालिक दा जस गाया जावे। जैसा कि गुरु नानक पातशाह ने अपने जीवन दे विच कीता, अपने जीवन दे विच उना ने होर कोई योग नहीं कीता, इको ही योग कीता कि उना ने अपने प्राणा राही प्रभु दी कीर्ति कीती। इतना गाया प्राणा करके, इतना गाया कि उना दा जप ही ज्ञान हो गया, उना दा तप ही ज्ञान हो गया। और साहिब फरमान करदे हन कि जेड़ा उस परमात्मा दी कीर्ति सच्चे दिलों करदा है, ओ मालिक दी प्राप्ति दे विच सफल हुंदा है।